सत्यनाम सत्यनाम जी बोलो नित्य नित्य जपिए तेरे नाम जी बोलो नित्य नित्य।